औरी पड़िया विघ्न गौतम साधन मारिय जे हा कल कल तेरे हो ना पुचारिय है ऐसी कला न खेडे जे दरगे गया हारिय है पड़िया ते उमिया विचार खेडे विचारिय मोह चले सो के मारिय है मोह चले।

न पिठ जाए सुचाह कज व्या लगा पण स्लोक कहत जाय सुत्या लगा दो अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पन में पाया किरता हुआ पाक पापी शांतन गड्ढे हाथ का पिया तत्त

0: मुथ कफ के पा फिका मुर कखिया आना ले सजाए महला पहला।
1: अंदर हो झूठे पै जवाहर दुनिया अंदर फैल, अड़सठ तीर्थ जे नावे तेरे नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नहीं हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे रंग रूवे चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी

हर रस है अगाए, रस है रस विच, नाम दे रस विच, वो नाम रस दे विच अंदरों दी भिजे हुंदे आ, जिस करके उन्हां दा मन अंदर तृप्त हो जांदा है, तृष्णा भी बुझ जांदी है, तृष्णा मुक जांदी है, वो अंदरों दी संतुष्ट हो जांदे ने, जिहड़े रस है जिहड़े हरी दे नाम दा रस पींदे ने, जिन्हां नूं नाम रस प्राप्त हो जांदा है। हर रस है अगहाए, ते जिन्हें नाम रस पीता, असी दुनिया दे रस लै रहे हैं ना, ये रस ना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए, पर जिन्हें हरी दे नाम दा रस मन करके चख लिया, वो तृप्त हो गया, वो संतुष्ट हो गया, उदे अंदर अडोलता आ गई। मारे कहिंदे हर रस का तू चख है साध, चाखत होए रहें बिस्माद, तू बिस्माद विच चला जाएगा। तां महाराज कहिंदे हर रसै अघाए सहज समाए, सहज आत्मक अडोलता, मन दी अडोलता, उन्हां अंदर अडोलता बन जाती है। घट घट रमैया जाते, उन्होंने फिर जान लिया कि हर घट विच मेरा रमिया होया राम परमेश्वर, और रमैया हर घट दे विच है, हर हिरदे विच है, हर थां हर जगह दे है। इसे लई से अखड़ियां बेअन, वो अखां कदों खुलनियां, जदों हरी दे नाम दा रस पियांगे। कई वारी ना सिर्फ एक समझण लई, कई वारी ना साडियां अखां बंद हो रही हुंदियां, शरीर डिगदा है, अखां बंद, ते कोई काढ़ा जहा हुंदा है, वो बना के जे काढ़ा पियो ते तुसी दो घुट भरोगे ना अखा खुल जांदियां, आलस दूर हो जांदा है, शरीर जड़ा है वो जड़ा डिगदा सी अखा बंद हुंदियां वो सीधा हो जांदा है। इसे तरह जदों मन शब्द दा रस पिएगा इहदियां अखा खुल जानियां, रस पिएगा, ये मन ने पीना है ना रस नाम दा, ये जदों मन पिएगा अखां खुल गईयां, जदों अखां खुलियां फिर घट घट रमैया जाते, जान लिया कि वो जिहड़ा रमिया राम है मेरा प्यारा, वो केवल मेरे हिरदे विच ही नहीं, वो तां घट घट मैं हर जू वसै संतन कहियो पुकार, वो तां घट घट, घट कहिंदे हिरदा, वो ते हर हिरदे विच वसदा है, हर एक दे हिरदे च। उन्हें फिर ये

महाराज जी आखदे ने कहो, नानक गुरु अर्जन देव जी आखदे ने, कहिंदे जिन जिस ने हर प्रभ डिठा हरी प्रभु दा दीदार कर लिया, दर्शन कर लिया, तिन कै सतगुर बाणे, मैं उन्हां तो सद के जावां, उन्हां तो कुरबान जावां, उन्हां तो मैं बलहारे जावां, उन्हां अगे मैं बेनती करां, आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे प्यारिया, तू मेरे गुरु दा दर्शन करके आया, तू मेरे गुरु दा दीदार करके आया, मैनू दस मेरे सतगुरु दा दीदार किदां दा है। ते जिहड़ा गुरु महाराज नूं समर्पित हो गया, जो दिसै गुरु सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए, मैं उहदे निव के पैरी पै जावां कि गुरु के प्यारिया तू ते गुरु दा दर्शन नहीं, तेरे अंदर ही गुरु समा गया। जे गुरु का खालसा है ना, असी क्यों पंजां प्यारियां अगे सिर झुकाउने आ, जदों पंज प्यारे आउंदे आ साडे हथ भी जुड़दे आ, सिर भी झुकदा, क्यों? क्योंकि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मारे कहिंदे इन्हां ने दीदार नहीं कीता, इन्हां ने सगो दीदार करके सदा लई मैनू अपने अंदर ही वसा लिया, सदा लई। जे कुरबान जाने ते 15 भगत साहबान बैठे आ गुरु ग्रंथ साहिब च, उन्हां तो कुरबान जाओ, जिन्हां ने उस प्यारे दा दर्शन नहीं उहदे विच समाई गए। भगत नामदेव जी किन्नी वार दर्शन होए ने उस प्यारे दे, ते दर्शन करदे करदे करदे करदे सदा लई उन्हां विच ही समा गए। राम कबीरा एक भए है कोई ना सकै पछानी, कबीर साहब तो कुरबान जाइए, भगत तन्ना जी तो कुरबान जाइए, भगत सदना जी तो कुरबान जाइए, भगत सैन जी तो कुरबान जाइए। ये वह ने जिन्हां ने दीदार भी किया, उस प्यारे नूं पा भी लिया। भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जी, इन्हां तो कुरबान जाओ, बाबा सुंदर जी तो, भाई मरदाना जी तो सद के जाओ, जिन्हां ने उस प्यारे दा दीदार भी किया और सदा लई उहदे विच समा भी गए ने। इस वास्ते गुरु महाराज जी ने जिहड़ियां गल्लां अज समझाईयां ने, पहली गल कि उहदा दीदार इन्हां बाहर दीआं अखां नाल नहीं होणा, उह अखड़ां अखियां होर ने, से अखड़ियां बियन जिन्नी दसंदो मां पीरी, ओखियां किवें उहदे दीदार होणगे? कहिंदे गुरु महाराज कोल आओ, आ के बेनती करो, महाराज जी ये मन दीआं अखां जिहड़ियां ने इहदे विच ग्यान दा सुरमा पा दिओ, ताकि असीं ज्ञान दा सुरमा पवा के उस प्यारे दा दीदार कर सकीए और असीं उस प्यारे वर्गे हो के सदा लई उहदे विच समा जाइए। ऐसी कृपा साडे ते कर दिओ। ते जिन्हां भुल्लियां भटकियां नूं गुरु महाराज जी ने यह दात दे के उस प्यारे दा दीदार भी कराया ते सदा लई जोड़ दिता, वह भागां वाले ने। ते भागां वाले फिर माण महसूस करते हैं। गुरु

0: सतगुरु जी अगे बेनती करिए महाराज ये रंग रतड़ियां रूहां सत संगत नाल सानू मिला दियो ताकि असी सत संगत करके तुहाडे कोलो ज्ञान दा सुरमा लैके उन्हां अखां दे नाल जिन्हां अखां नाल प्यारे दे दीदार होने ने उन्हां अखां नाल असी अपने प्यारे दा दर्शन कर सकीए और करदे रहिए ताकि लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले जीवन बन सके। अज दी विचार करदे आं बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देण अगे तो समत देण तुहानू सारिआं नू चढ़दी कलां वाला जीवन बख्शण आप भी जुड़ो होरां नू भी जोड़ो बाणी बाणी दे धारनी बनो। गुरु पातशाह जी दे पावन बचन अपने हिरदे अंदर वसा लईए जी।
1: श्री सज्जन संत से सुखिए

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा आनंद।

कला जित कर तारी। पांच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुझन को से नाम हर कह लागे। कह नानक तय सुख हो तित कर अनहद बाजे, आनंद सुनो बड़ो।

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे

कहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दियां दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपया वंड सकया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता

चाराम से पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जियां दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया।

आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सल के हाजिर है। धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो जो जी सके। आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा।

मेरे मन पज राम नाम सवेरथ गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया मिन नावे जीवन बिरथा रहाऊ।

जन नानक चले मेलंता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार सतनाम,

सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत में तो तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम।

श्री हर कृष्ण त्याय डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सुमिरै करनो निदावे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजाब

रतन नाम हर वसया गुर हाथ धरयो मेरा माता जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे

तेरा अंत न जाई लख्या रहा। जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला पर पूर रहया, तू सच्चा साहेब।

बोलो जीवा हे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथमा भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास,

बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जय जन नानक चले मिलन था हम अंधुले ज्ञान हीन अज्ञानी क्यों चले मार्ग पंथा हम अंधुले को गुरे अंचल दी जय जन नानक चले मिलन था वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

तुधु अगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा।

जिन मानुष ते देवते किए करतन लागी वार सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद

सन कुंद दसन प्रिय सैत कंठ माल मुकड़ शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग लख अगम खेल किया आपने उषाए जियो अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहया समाए सुते सित रूप तरयो साहन के साहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा।

नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया।

0: माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मूसे ज्ञान विहुणी खाई गया जमकाल महला पहला
1: वाइन चिले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ रवा चाटे पावे खै लोग सह कर जाए।

मग सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारत है कुड़ियारा खर विकार एक हो दाखाए चल्या दाव देना पेका इकार जल थ

0: नानक भगता पुक सलाण सच नाम आधार सदानंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार।

0: किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहरी स्वास्थ तिस तिस दीवाना पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख निकियां चंगियां लख पुना प्रवान लख तप उप तीर्थां सहज जोग बिबान लख सुरतन संग्राम रण मह छुटे पुराण लख सुरतीला ज्ञान ध्यान पढ़े पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखियावन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचान छान पौड़ी सच सब एक तू